0: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक साहित्यकार को जो नाटक भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और तमाम श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
2: बड़ा आत्मीयता का भाव, सारस्वत भाव। और जिस ढंग से नाटक पर मुझे अभी साहित्य एकेडमी, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी से अवार्ड भी मिला और विविध भारती की पहचान हवा महल से है मेरे जहन में। बचपन से हम लोग 8:15 बजने का इंतजार करते थे और हवा महल का बहुत बड़ा योगदान।
1: अब 8 बजे का समय हो गया।
2: 8 बजे का हो गया। जी हाँ
1: जी। और भी जो बहुत सारे पुराने प्रोग्राम है, छाया गीत, संगीत सरिता, वो अभी भी ब्रॉडकास्ट?
2: जी हाँ जी हाँ, छाया गीत नियमित सुनता था मैं। हाँ। और कहीं हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो FM विविध भारती ही लगा लिया जाता है। और आपको बताऊं ममता जी, हाँ। कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। हाँ। मेरी जो श्रीमती जी हैं, उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया?
1: अच्छा।
2: बोले FM रेडियो नहीं बज रहा है। अच्छा। और मैं विविध भारती सुने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहां से विचार आया ये नाटक लिखने का, इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको?
2: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य एकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपए का है, वो घोषित हुआ है मेरी नाट्यकृति जलनाद पर। और जलनाद कैसे लिखा मैंने, मैं आपको

0: हूं, विश्व जल वर्ष था यूएनओ का, तो नॉर्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं। तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती हैं ममता जी कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से वो भी जल प्रलय से है।
1: जी हाँ।
0: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे, और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
1: जल ही जीवन है,
0: जल ही जीवन है, पानी का लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ वहां भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
1: तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाथ, इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहाँ से आपके पास आइडिया आया,
0: इसमें
1: क्या रिसर्च किया आपने?
0: जी हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए बात की गई है, तो मैं उससे एक जो उसका हिंदी मैंने भाव अनुवाद किया है एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूँ। हे जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए, तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो ये हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
1: जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं।
0: हाँ।
1: और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
0: ममता जी, व्यंग के ट्रिपॉइड मध्य प्रदेश में है
1: जी।
0: शरद जोशी जी, बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे।
1: उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता
0: जी
1: था।
0: हाँ। और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था सुनो भाई साधो,
1: सुनो भाई साधो जी।
0: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो ये सब पढ़ा मैंने। रविन्द्रनाथ त्यागी जी वो भी मध्य प्रदेश के थे
1: जी जी जी।
0: और जो एक कहा जाए कि व्यंग के ट्रिपॉइड, ये तीन स्तंभ रहे हैं और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा, और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग के बीज अंकुरित होते रहे
1: जी।
0: व्यंग देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं अलग से, आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है, लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग संग्रहित, समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक।
1: कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप?
0: हाँ जरूर, मैंने कुछ संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग संग्रहों का, मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों, तो उस वजह से जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूं तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत, जैसा नाम से ही है उस नाम से मैंने ये निकाला था, तो इसमें पूरे

0: विश्व के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से जो व्यंगकार उस समय व्यंग लिख रहे थे, उनके व्यंग दुबई से, वो लेकर के और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था। तो उसका नाम मिली भगत है और उसका संपादन मैंने किया था। जो आपने बात की कि मेरे व्यंग की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है, यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है, अंत्योदय जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है, उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग में एक लक्षणा शक्ति होती है, एक
1: मुश्किल भी होता है व्यंग्य लिखना, क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिखकर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें, दोनों विधा। तो आपके लिए किस तरह की चुनौती रही?
0: व्यंग में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। उलट बांसी में हम किसी चीज की अतिशयोक्ति से इस तरह से बताते हैं कि उसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत मैंने उसके हंसी उड़ा रहा है, है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे
1: किसी व्यक्ति विशेष को,
0: कोई हमने एक पात्र चयन किया, जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बना करके, जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का हम किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें, दोनों चेहरे तो एक से हैं।
1: जी, जी जी
0: कई बार ये स्थितियां होती
1: हैं। तो हम किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो सकते हैं, हम इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए ममता जी, आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए, क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता है।
1: जी, अमर प्रेम फिल्म का गाना,
0: अमर प्रेम फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना
1: सुनते हैं, यही गीत।

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की,
1: जी हाँ,
0: एमटेक किया,
1: जी हाँ,
0: बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे,
1: जी हाँ।
0: तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो शेयर
1: ममता जी,
0: करें?
1: मैं इसके लिए कहूंगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे
0: जी जी
1: हैं।
0: जी
1: मैं

0: ना लकी नहीं था,
1: विरोधाभास रहा
0: मेरे जीवन में, क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूं कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूं, मंडला में मेरे दादाजी जो थे उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे।
1: अच्छा, क्या
0: मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चार्ट डाले थे।
1: क्या तो उसमें पढ़ने का एक खास शौक हुआ करता था, दौर था पढ़ाई का,
0: बहुत दौर था क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे, रेडियो, अखबार के साहित्यिक कॉलम वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे, पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक आता,
1: कौन पहले पढ़ेगा।
0: तो ये जमाना था,
1: मनोहर चांद जोशी का साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान तो इंतजार होता था
0: धर्मयोग,
1: कौन पहले पढ़ेगा
0: धर्मयोग जी, जी। और उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए
1: जी।
0: तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से, लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना जाता
1: है। इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो साहित्यिक रुचियों में
0: रुचि में था, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल
1: थे
0: जी हाँ। तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहां से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने रायपुर से BE किया, फिर उसके बाद BE करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया MSCTA भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में, तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बनकर रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम तब तक वो कंपनी बदल लेते हैं।
1: तब आपने एक जगह नौकरी ज्वाइन की तो बस वहीं पे स्थायी रूप से, लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दे मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है, लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है, तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया, कोई ऐसी घटना याद आती है?
0: आप सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग ज्यादा
1: थी,
0: खपत ज्यादा थी, अब हमारी मांग के अनुरूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी उसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं, भारत में बिजली बनाने के जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा मैं कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहां पर पानी की जो स्थिति, जो ऊर्जा है उसको, पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन, मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि तांबे का कोई जो हमने फेराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो थर्मल बिजली कहलाती है, उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है, तो मैं मंडला में पदस्थ था तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे, जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी

0: मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहां की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और जमीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है। अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
1: जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
0: जरूर,
1: कौन
0: जरूर।
1: सा गाना?
0: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
1: बहुत मशहूर,
0: मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
1: जी जी,
0: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को। आज
1: तो ये
0: आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है, मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है।
0: क्या बात है, आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी, आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
1: तो अब यही गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: कि जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे आपके पास शिकायतों की भरमार? आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है,
1: ममता जी,
0: तो ऐसी कोई
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छा
0: तो?
1: सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो
0: हाँ
1: मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है, यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही

0: विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पे वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती जी, रहे जी, ये उनकी उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीबी की तरफ से, क्यों, क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली। लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
1: तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
0: हाँ, श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती हैं। अच्छा। क्योंकि मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, प्रकाश रहे, कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें, तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था तब हम घर की पूजा करते।
1: जी जी।
0: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है, जब यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है तब कहीं जा करके।
1: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है। चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं, तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार। ये 1959, ये
1: अनाड़ी फिल्म का गाना,
0: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959, 28 जुलाई 59।
1: तो सुनते हैं ये गाना।
0: जी हाँ।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए
1: जरूर।
0: लिखते समय
1: व्यंग मेरी मूल विधा है
0: जी,
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूं और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज्यादा सहज और सरल समझता हूं। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं
0: जी,
1: जो मैं कभी कभी कहता हूं कि हर व्यक्ति

0: कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और आप इसे समझ सकती हैं, क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूं। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था
1: जी।
0: तो उसमें भी गिरिजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं
1: जी जी।
0: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा।
1: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं साहित्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3,00,000 से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे।
3: विंटनारो विविध भारती FM 101.3।
4: లైఫ్ చాలా బోరింగ్ గా ఉంది యార్, అయితే సినిమాకి వెళ్దామా?
5: వీకెండ్ లో మంచి సిరీస్ ని ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి బింజ్ వచ్చేద్దామా?
6: అక్క పోనీ ఎక్కడికన్నా టూర్ కెళ్దామా?
4: చూడండి, ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు 2 టైప్స్. టైప్ 1 పనులన్నీ పక్కన పడేసి ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు. టైప్ 2 ఒక్క నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా అన్ని వర్క్స్ ని టైం కి కంప్లీట్ చేస్తూ ఎంజాయ్మెంట్ కి కూడా టైం ఇచ్చేవాళ్ళు. నేను టైప్ 2, ఓకేనా?
5: అయితే నువ్వు ఆకాశవాణి విజయవాడ వివిధ భారతి FM 101.3 వినాల్సిందే. ఓ పక్కన వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూనే ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ కూడా దొరుకుతుంది. అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ ఎంటర్టైన్మెంట్.

0: युवाओं ने ठाना है, भारत को आयुष्मान बनाना है।
1: आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार।
0: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।